World Inco Festivity Offer. अब पाउंड होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थहरू लागू होने छिटो बने गई वर्ल्ड इंक।

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना मा वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोकी को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया मा साथ मा IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो

0: Bank Limited. Access to all.
1: 딱발 알레 순대오는 차 레디오 앤 RN 99.1 사백가 야기 숫자나
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो म्युजिक मस्ती

0: तू अभी तक रेडी नहीं हुई?
1: क्या फायदा, वो तो आ ही नहीं रहा है।
0: तू अपने बेस्ट फ्रेंड के शादी में ऐसे जाएगी? खुश हो जा, वो आ रहा है और तेरे लिए एक सरप्राइज है। तू झूठ बोल रही है।
1: सच्ची।
0: अब मैं दिखाती हूँ उसे सरप्राइज क्या होता है, देखती जा।

0: Worldlinko festivity offer. अब pound host एक वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router, Nokia beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रूप 1200 प्रति महीना में. सर्थहरू लागू होने चाहिए. छिटो बने गई Worldlink.
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज.

गीत संगीत को क्षेत्र में चर्चा अनि परिचर्चा बटुलने क्रम में तिम्रो लायक भैनको अपार सफलता संगे संघर्षशील कलाकार एवं लोक दोहोरी गायक प्रशांत पौडेल को उत्कृष्ट शब्द संगे प्रशांत पौडेल र निशान केसी को सुंदर लय सृजना में चर्चित लोक दोहोरी गायक यमन खनाल र सिमरिका बिसी को सुमधुर स्वर में सुपा देउराली म्यूजिक प्राली को सगौरव प्रस्तुति निशान केसी को गीत एल्बम तिम्रो मेरो फिरती

0: अरे चटपट आयो चटपट। हाँ चटपट आयो चटपट।
1: अरे यो चटपटी वाला दाई त बाहिर गएको थियो त, कहिले फर्केछ?
2: त्यही त फर्क्यो होला, छोड दे।
1: अनि अहिले चाहिँ कहाँ गइरहेछ?
3: कहाँ जानु नि, त्यही सम्झनाबाट त गयो होला। के रे
0: किन हो त्यसरी माया मारल बा।

क्यों घास वन में आगो लगो भनी जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भनी वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने साह्रै पीरा मान्छ फागुन देखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर आफ्नो

0: दमोली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए नानी, कता हिँडेउ छाता ओढेर? हतारमा छौ त?
2: एसआर इलेक्ट्रोनिक्स एलजी सोरुम हिँडेको नि दाई।
1: एसआर इलेक्ट्रोनिक्स एलजी सोरुम कहाँ छ नि नानी?
2: यो त ब्यास दुई कालीका

0: बाहुली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्नीचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टि रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबुल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 0 56 05, 98 19 11 36 27, 65 65 0